जाम साथी धुमधाम राई तपन नया इबी मेरो टियागो इबी सँग लाइफ छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's

काम कति धुमधाम राइट सपन नयाँ इभी मेरो टियागो इभीसँग लाइट छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, catch the fun. Go!

0: रेडियो हिमशिखर 103.3 मेगाहर्ज।
1: यस खबर परिक्रमाका साथमा इलेक्ट्रिक स्कूटर तथा इलेक्ट्रिक साइकल सुपथ मूल्यमा पाइने सोरुम दमक इन्टरप्राइजेस गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि। फोन नम्बर 9861901013।
2: मिठो मिठो मामा तयारी छ।
3: मामासँग हाल्का रमाइलो।